जग सपने जो जात रसने इन आकाश तेरो नहीं नानक ही नानक गर्भ करत है देह को बिन से छिन नहीं हर जस कहे तो नानक तो जीत जग जीत समरण।

जैसे एक स्वांगी कहूं जोगिया बैरागी बन कब हूं संन्यास भेस बन कर दिखावई। कहूं पवन हारी कहूं बैठे लाए तारी कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी कहूं डंड धारी होए गए लोगन परमावई।

पुराण योई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फेरे आग में मिलाएंगी। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फेर धूर ही समाहेंगी। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगी। तैसे विश्व रूप ते भूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगी। किते कछ मछ किते उनको करत पछ किते अछ वछ हो इस पछ उड़ जाएंगी। किते नब बीज अच पच को करेंगे पच के तक प्रताछ हो पचाए खाए जाएंगी। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज माया तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगी। कूकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी कित के उदासी के परमाई फिरत है। करवत सहत किते भूम मैं गडत किते सुआ पर चढ़त किते दूख को परत है। ज्ञान मैं उड़त किते जल मैं रहत किते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानु बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। कस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे पीतन लगाए हारे छापसी। गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर साब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न पामंग। अलेखंग अभेखंग अजूनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग। नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहाँ वास्ता को फिर कौन पेखंग कहाँ नामता को कहाँ कह कहा कहाँ कह बखानो कह मैं न आव। न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग। अद्वैखंग अपेखंग योनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। परेयंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछयाद अद्वै अविनाशी। न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अपंगे नमो।

अधे अभय अध्वय अविनाशी परेम परा परम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुपूते पविखे पवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभिखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचय आदद व अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वरणंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखातंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पीदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभायाद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अक्षयाद अविक्तय अथापे विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न परमंग न सर्मंग न साके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रे न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के परम पूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेस के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के

है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अपेख है, न तात है, न मात है, अख्याल अखंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अपंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न पंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, परमाथ है, न सीत है, न सोच है, न क्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध

है अगंज है अपंज है परम है अपूत है अछेद छेद है सदा अगंज गंज गंज है अपूत अपेग है बली अरूप राग रंग है न द्वैग है न पेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है अपूत अपिज है सदा छिज तेज मानी है न आद है न ब्याद है अगाध रूप लेखिया अदोग है अदाग है अक्षय प्रताप पेखिया न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है न अपंग है अनंग है गंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाउ है न पाऊ है न दाऊ को प्रकार है गजाधपि नरादपि करंत सेव है सदा चतुष्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा।

सर भूको परन दुष्ट गंजन सत्र भंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जयगाथ भूत पब भविख भवान परमान देवा गंज आदंत अनाद श्रीपत परम पुरख अपंज धर्म के अनकर्म जेतक कीन तौन पसार देव अदेव गंधर्व किन्नर जच मच्छ कछ अपार भूम आकाश जले थले मेहमानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक सत्र कालक दीन दयाल मुकंद अगौ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरण

गुरु क मंकण शस्त्र च मंकण फणी अनफुंकारण धर्म धुजी अष्टाद प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुद सनाहे अगम अथाहे एक प्रति जय जय होसी मह खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध प्रति सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथि कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथि किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाए पताल आकाश अनली संकटी निवास।

सर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक पटी पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटी चंद्रानन चारा नरक निवारा पतत उधारे मुंड मथे जय जय हो सी महासुर मर्दन तुमर बधुंसन आद कथे रगतासुर मर्दन चंड चक्रदन दानव अर्दन बिडाल बधे सरधार बिबरखन दुर्जन तरखन अतुल अमर

खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सका पद्मापत वेद कतेब अभेद उजारा रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोजी नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न पेव लखे भ्रम स्यो परमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किन श्री पद्मापत पाए आद अनंत अगाध द्वैग सभूत भविख भवान अभै।

को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कही अत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पैना दीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाचे पहुंचे तता है चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी योग द्वार दही अत है। केते महादीन केते ब्यास से प्रवीण केते कुमर कुलीन केते जच कही अत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लही अत है। पूरन अवतार निराधार है ना पारावार पाई है ना पार पै अपार कह बखानिया। अद्वै अविनाशी परन पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कह मानिया। जंत्र हूं ना जात जाकी बाप हूं ना माए ताकी पूर्ण प्रभागी सो छटा के अन्न मानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है ने जंत्र कह कह जानिया। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है वृक्षता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है के मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा विनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोखत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को कार है। देवन को देव है निरंजन अपेव है देवन को देव है के शुद्ध

है। विश्व को परना है कि आपदा को हरण है, कि सुख को करण है, कि तेज को प्रकाश है। पाइय न पार, पारावार हूं को पार जाको, की जित विचार सो विचार।

मूक देव है। निरंजन अपेव नाथ द्वैब नाश है, अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के पुजैया है मोहिया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है, तरिया द्रुम छाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हार है, के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छब कालिंद्री के कूल के। हंसनी सी सिहा रूम हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातों से दरूल के। पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदे नीक चंदेरी कोट, चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़, काशीपुर सीरा सी सुरंगाबाद नीके रसोहियत है। हिमा सी हिमाल हर हार सी हलब्बा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगदार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। परासी फिरंगी परासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। पखरी कंधारी गोर

पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र के तापी नाथ कीरत तिहारी को ना पार पाई अत है तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वै नास आसन अडोल अद्वैन उपमा अतोर अच्छा स्वरूप व्यगत नादा जान सर्वा प्रमाथ जय तै मही बन तन प्रफुल्ल शोभा बसंत जह तै प्रडुल बन तन दुरंत खग मृग महान जह तै

सिमट पयो शंकर इकट्ठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य वार असिख्य संगरों।

0: सटिया मंथ गुप्जे देने के विचार दे मंगे सैसे गुना सो करे संसार चोरा जारा दे कुड़िया रखा रा बाविकार
1: खुदा खाई चले था उतना बिकाएगा जल थल जिया पुड़िया नो आकार आया कार होए जे आखे से सोहे जाने तना मिले निसार नानक भक्ता भक्सलाइन सचनाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंती आप छार।

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पाया, बिन सतगुरु किने न पाया, सतगुरु विचार रखे अंदर प्रगट आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिओं जित लाया। जग

बड़ी साहेब होए दयाल, कृपा करे ता साहिकार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी, हुक्म न होवे प्रमाण ताकस में का महल।